जिन सब किछ वस कीता, घर इको बाहर इको, थान थनन तरे आप, जी जंत सब जिन किए, आठ पहर तिस जाप।

जिन्ना सतगुरु सिउ चित लाया से पूरे प्रधान। जिन कौ आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिन कौ मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखां सुख उपजै।

आप होवा मेहरबान। सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार। हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार। पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुर जे मिले पाई शब्द निधान।

नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बिखसिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच स्यों मरै ना आवै जाय ना वे छोड़िया बिछड़े सब महर।

राम नाम अमृत नगर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मनहु विसार। रहा

थान खंतर रब रहया प्रभ मेरा भरपूर। सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजे ओन।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चा

विचार। नानक ते शरणागति जे सगल कटां आधार। श्री राग महला पंजवां। रसना सच्चा सिमरिया मन तन निर्मल होए। मात पिता साक अगले तिस बिन अवर ना कोए। मेहर करे जे अपनी चसा न विसरे सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास बिन सच्चे।

रहाव, सगल पदार्थ तिस मिले। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागै डंड। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना सच छड जासी लख करोड़, सर पर उठी चलना छड जासी लख करोड़, लख

रहाव जिच रवस्या कंत कर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात पेयड़ै शह सेव तू साहुरड़ै सुख वस गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगै दुख।

ध्याए गुर के चरण मन मह त्याए छोड़ सगल सियाण पा साज शब्द लिवलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ ब्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौ तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाउ सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

करणी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां दो

वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

पाए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार गुर दाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार।

नाम सास गिरास ना विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

नानक गुर शरणागति मरै न आवै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

ना जाए। नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है। कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार। नारी

शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार आस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदै पाए गोरड़ा खे से उबरे साचे स्यों लिवलाए हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल न लग गई सच कर जिस ओताक नजर करे सच पाई है बिन नावें क्या साक जिन्नी सच पछाणिया से सुखिए जुग

साथ सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान।

हुक्मी साच समाहे नानक जो तिस पावै सो थियै इन्ना जनता वस किश नाहे श्री राग महला पहला मन झूठै तन झूठ है जिहवा झूठी होए मुख झूठै झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए बिन अब शब्द ना मांजियै साचे ते सच होए मुंधे गुणहीनी सुख के पिर रलियां रस मानसी साच शब्द सुख ने रहा फिर परदेसी जे थियै धन वांढी चूरे ज्यों जल थोड़ै मछली करन पलाव करे फिर भावै सुख पा

जान बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोय हर वर नार सुहावनी मैं पहावे प्रभ सोय नानक शब्द मिला बड़ा ना वे छोड़ा होए श्री राग महला पहला।

श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहज

क्यों थिर रहे सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊ रहाऊ।

ना चीत शब्द रपै कर पाई निर्वाणी पद नीत हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाऊं शब्द सलाही मन बसै शब्द सलाही मन बसै हों मैं दुख जल जाऊं।

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे के हे कर्म मिले सो पाई किरत पया सिर दे

तिड मल बिन गुड़ प्रीत न उपजै होम मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पछाणिए।

बहुता जीवन मंगिया मुआ न लोड़ै कोय, सुख जीवन तिस आखिया जिस गुरमुख वसिया सोए, नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए, ज्यों सुपने निस फुलिया जब लग निंद्रा होए, इउं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए, गुरमत होए विचारिय सुपना एहो जग लोए।

पहले स्तार है अष्टपदियां, श्री राग महल्ला तीजा। कर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा करे।

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत कर

जियो। हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जा को जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दुए कर मस्तक धार जियो।

ज्यों जसदा कर कान हथो हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा।

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै बनजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए, जोबन कटै जरुआ जणै, बनजारिया मित्रा आम कटै दिन जाए, अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा।

अलख अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्र गुप्त का कागद फारिया जम दूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे खेप सवली।

सतगुर तुठे, लड़ली ने लाए नौ निद पाए, नाउ सर्ब सठापुर दीना, नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना, श्री राग के

जस नानक आप सुनियो हे संत। प्रेम ठगौरी पाए रिझाए, गोविंद मन मोहया जियो। संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो। हर कंठ लग सोहया, दोख सब जोहया। भगत लखियन कर बस पए, मन सब सुख बुठे। गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास।

सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द विचार जिहवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चै सतगुर से।

आओ नानक पूर्व लिखिया कमावण अवर न करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिनना मैं को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी, हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम,

आदिष्टिया गोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा। सतगुर सेवे अपना सो सिर लेख लाए विच हो आप गवाए कह रहन सच लिवलाए। सतगुर जिनी ना सेवे तिन्ना बिरथा जन्म गवाए। नानक जो तिस पावे सो कर

देओ पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाना सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राज।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है, सार अफसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै, पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया, राम हृदय ते खोया। अवर मत माया मन तोले, तौ भग मुख जन्म बगोया। पुंडर केस कुसम ते

मिल सतसंगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभव सह जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक दीन करहो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कम

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेरे

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर नाम।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनपौ पुरख दिखारया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया,

सुहाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सागुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए।

लाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो। दुख पंजन निदान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहो मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला।

तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावै अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन।

संत खेल है तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिन कै संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पंजवा।

ज्यों बारिक तीखीर अगावै ज्यों निर तन तन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवां अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै नाम निधान तिस है प्राप्त जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अघना जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना

साहिब भावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किश ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जा हर जियो अपने ठाकुर जो पहराया बहुर न लेखा पुछ बलाया इस सेवक कै नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो माज महला पंजवा सब किश कर्म है बाहर नाही बाहर टोले सो परम पुलाही

विचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

मार्ग चले हौ बल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उधारे। किल विख काट होवा मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। किल विख काट होवा मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दोए

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अनदिन नित जागी, बहा पकड़ तिस स्वामी मिलै, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

यो मन भिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हो वारी जियो वारी एकस स्यों चित लावणिया गुरमति मन एकत घर आ।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

मनमुख अंधे सोध ना सारा, गुरमुख होवे सो अपना कर राखे। पंच दूत शब्द पचावणे, एक गुरमुख सदा सच्चा रंग राते। सहजे प्रभ से वह अन दिन माते, मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे। हर दर सो

अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवै हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भुख लह जा बणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसै।

काई बिख बिहाज है बिख मोह प्यासे कूड बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी को जाना दूजा मार मन सच समाना।

निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावनिया। सो निर्मल जो शब्द सो है, निर्मल

गोविंद उज्जल उज्जल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उज्जल सदा मुख सोह है अत उज्जल ना

अमृत नाम मन बसावणिया अमृत नाम महारस मीठा गुरमति अमृत पियावणिया राव हौ मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक।

शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावणे गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणे गुरमुख आनंद

नानक नाम मिले वड़ियाई पूरे गुरते पावनिया माज महला तीजा एका जोत जोत है श्रीरा शब्द दिखाए।

अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया कथो कथिया शब्द सुहावै गुरमती मन सच्चो पावै सच्चो सच रवै दिन राती।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सुख है कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिनको रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिसको तू प्रभ

वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतरह सब वियोग नानक को प्रभ।

मंगिर माहे सोहंदिया हर तिर संग बैठड़िया तिनकी सो भाक्या गणी जे साहिब मेलड़िया तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़िया।

गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेवहु सत निरंजनो हर पुरख बिधाती तू आपे आप सुजान है वट पुरख बिधाती जो मन चित तुद ध्याए दे मेरे सचिया बल बल हो तिन जाती।

पहला नारिजित दस्त आकसे हमारा एक आसवसे अस्त एक दिगर कुई एक तुई महला पहला।

मन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइए श्लोक महला पहला। नानक गुर संतोख रुख, नानक गुर संतोख रुख, धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरे।

आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझे। कह कह कथना माया लूझे, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक अखियो आप। लह प्रांत होवे जिस दात पौड़ी।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशल

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए।

मन शब्द मरै प्रतीत होए होमै तजे विकार जन नानक करमी पाइन हर नामा भगत पंडहार गौड़ी बैरागण महला तीजा तेई अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव कड़ै गुण समलै सहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरै पेय फिर वसै कहो कित विद पाइय।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सतसंगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन।

बिन सजाए कूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिवलाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्यावै।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्ते।

ज्यों जननी सुत जन पालती राखै नदर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाने धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा।

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साथे तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी मिल

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो, मन

जिस ग्रह में है कोई जागत रहे, साबत वस ओह अपनी लहै रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती, मुसन

आद संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभिमान पहे निर्वैर आठ पहर पूजहो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ।

सुख निदान हर अलख स्वामी, जी जंत तेरी शरणाई, नानक नाम मिले वड्याई, गौड़ी गुवारे री महला पंजवा। जी जुगत जाके है हाथ, सो सिमरहो अनाथ को नाथ, प्रभ चित आए सब दुख जाए, भय सब बिन सह हर कह नाए, दिन हर पौ काहे का मन है, हर बिसरत काहे सुख जान है, रहाओ जिन तारे बहुत।

लाथी भूख तृष्ण सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुर पूरै धरयो मन जीतो जग सारी तृप्त अघाए रहे।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सब

पत पाए। गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हों हों करत नहीं।

सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर भरम चुकावै, निर्भउ कै कर ताड़ी लावै, हौ हौ कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना ना मोह भूले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राखो रहना।

हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे भरम चुकाया, जिन कै मन वस्या सच सोई, तिन की संगत गुरमुख होई।

पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जोयन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मह एको रवै।

गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए। प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए, सोलह अष्टपदियां ग्वारे री गौड़ी किया। गौड़ी बैरागण महला पहला, एक

आत्म सुख तारा हित उतरा खो दीन दयाला तौ शरणागत नदर निहाला रहा जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सहना दियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई क्या ले आया ले जाए कया पास है जम जाला डोल बदा कस जेवरी आकाश पाताला

रोता। आवत कौ जाता कहे जाते कौ आया। पर की कौ अपनी कहे अपनों नहीं पाया।

आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां।

मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त्र सिमरत सोध देखह कोए, बिन नामै को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कलमह गुरमुख उतर सपार, साचा मरै न आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

परम पुलहाए मानमुख अंधे सदा भिख खाए जम डंड सह है सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई होमे मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई।

दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम लिव लाई। गुर मिले हमको शरीर शुद्ध पई, हो मैं तृष्णा सब अग्न बुझई।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावै माया अर्थी न तृप्तावै न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किश एक।

कृपा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तहरै।

लो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पश पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साद संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

राम समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता।

हर संग रखवाला पूर्ण पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम।

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुम।

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको रव।

या जुगम है एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट में उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, कार हो कृपा जिस है गुसाई, एत ओत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक आवत हुकम विनाश हुकम।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

महपुर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊं जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना। श्लोक

गोविंद भजहो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यों या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल पौड़ी। अखर महत्र पवन प्रभ तहारे, अखर कर कर वेद बिचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर।

अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ काल कलेश तन माहे मिटावाओ सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधाखेर कीने राम नाम एक आखेर।

प्रभु कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभु कै सिमरन हुए सो पहला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला।

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमाहे उदाहरी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग

पेख अनेक अगन नहीं बुझाए, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझाए, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सो

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद

अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल।

मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहें, मिथ्या हस्त पर दर्व कौ हिरहें, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावहें हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभता कै। जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास।

राष्ट्रपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहरना तृष्णा लागे आए मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म बूझ।

आप अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त

फरमाए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्ब कला आप है परवीन, तह वेद कतेब कहां को चीन। जब अपने आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहां विचारे, जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप, जह अशल अशेद अपेद समाया, ऊहां किसह व्याप्त।

श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान।

होत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह हो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन।

प्रधानते जिह जान्यो परपंच कुसंबास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस बेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान।

जिन सतगुर मिली है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीस है होर का।

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की। जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े। जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े, तुद नो सब ध्यान दी।

करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

जहे अबोल तहमन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लखे ना कोई, अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार, बटक बीज महराव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अलह लहंता अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद।

पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल सामान चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मुरार सत संतोख का तरहो ध्यान कथनी कथय ब्रह्म ज्ञान।

जिह साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान।

भेख बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुविधा छोड़ नाम निस्तरै, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर

गुरमुख हर गुण आख बखानी, जब जब नाम मन भया आनंदा, सत सत सत गुर नाम दृढ़ाया, सत सत सत गुर नाम।

सम्हारे। एको एक आप एक एक है सगला पासारे। जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

किस आख सुनाइए। जे कहना सो प्रभ जी पास, सब किश कीता तेरा वरतै, सदा सदा तेरी आस। जे देह वड्याई तां तेरी वड्याई, इत उत तुझ है।

कटे कन्हेरे सुख सहज आनंद तना गुर सेवा ते पहे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा।

योग तिस है आराध मना बिनाश है सगल रोग राखन हार अपार राख है अगन माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जा।

आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

भई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहज हर रस चाखिया, मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे, सच्चा शब्द सुपाखिया। पढ़ पढ़

अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत।

जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे ना दाते, जल संग राती माछली नानक हर मा

शिंगार हबरस अर्पिए, जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए, तह साध संग ना डरपिए, कर कीरत गोविंद गुणिए, सगल पराशत दुख।

गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

वे पापी सदा फिरह अपराधी मुखो अपर सतहावह सदा सदा फिरह अभिमानी सगल कुटुंब डुबावह।

छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद ना बरख है नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पए संग तेरे, इंद्री का बल थाता। चरण रहे कर टरक परे, है मुख हो न निकसै बाता। थाके पंच

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

देखभाल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त पय जोत